धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा आहा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आहा।